I have been a great admirer of this wonderful person, Mohammed Rafi. मैं हमेशा सोचता था कि भाई ये ऐसे टैलेंट बहुत रेयरली मिलता है, बहुत रिस्पेक्ट में मैं करता था उनको. रफ़ी साहब हमारे हिंदुस्तान के संगीत जगत में मेल सिंगर की हैसियत से सबसे बड़ा गाने वाला है.

वाह महफिल में तेरे हुस्न का, तेरे हुस्न का शोला जो भड़ के, शोला जो भड़ के, पहलू में वे फरार दिल, वे फरार दिल।

चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल। छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल।

नन्नी चींटी के पर में हाथी सारे बांध दिए, नन्नी चींटी के पर में बैलूनों की छतरी से उतरे परियों के घर में।

भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं, यही सच्ची बात है। इसलिए भजन ध्यान करते हुए इस बात को याद रखें कि भगवान यही हैं, हमारे अंतर में हैं और हमारे हैं। यही प्रभु के प्रति समर्पण भाव है।

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

बीन कोटरावर तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुन वालों तो दीजिए आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस ga jij binnenkort trouwen? Door wie baan honen wel het, door shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

ये उजाला रेडियो है और यहाँ से हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम सबरंग आगाज करते हैं, जो आमसदम से जो से नशर किया जाता है। हर एक सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं हूँ आपका हम सफर निशा। नगमे जो हमने चुने हैं अपने संगीत के खजाने से, इसमें ज़रूर आपकी पसंद भी होगी, इतना मुझे यकीन है। आप बेसब्री से इस पल को इंतज़ार करते होंगे। शुरू करती हूँ इस पैगाम से। रब कहता है किसी को तकलीफ़ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी दे देते हो तो फिर अपने खुशी के फिक्र मत करना। मेरे दिल में है इश्क मोहम्मद।

नाते नबी पेश था, आवाजें थी अब्दुल रहमान और साथियों का। इसे रूहानियत अंदाज में सुनवाते हैं भजन, दर्ज है। मोरे शाम पल पल, मोरे मुख से निकले निस दिन तेरो नाम।

रूहानियत अंदाज में पेश था मजहबी और भक्ति संगीत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं। इस प्रोग्राम में हमने कई शैलियों में गीत संगीत पेश करती हूँ। गजल शौकीन के वास्ते हमने गजलें चुने हैं। उम्मीद है कि आप इस हिस्से के प्रोग्राम में लुत्फ उठाएंगे। पहले शेर अर्ज है, उसकी मोहब्बत का सिलसिला भी क्या अजीब था, अपना भी ना बनाया और किसी का होने भी ना दिया। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना

दिल छू लेने वाली गज़ल पेश थी महान गज़ल गायिका बेगम अख्तर की आवाज़ में। कलाम था शायर शकील बडायूनी का। हमें अब खो के कहता है मुझे तुम याद आते हो, किसी का हो के कहता है, किसी का हो के कहता है मुझे तुम याद आते हो। समंदर था तो जोर व शोर से लहरे बहता था, अब कतरा हो के कहता है मुझे तुम याद आते हो। बयां करते जो हाल दिल तो यूं मुस्कुरा देते, अब वही रो के कहता है मुझे तुम याद आते हो। ना पूछ उसकी बदनसीबी का आलम मोहसिन, वो मुझ को खो के कहता है मुझे तुम याद आते हो। जिस दिन से जुदा वो हमसे हुए इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया।

खूबसूरत अंदाज में पेश थी ये गजल पंकज उदास की आवाज में। कलाम था शायर शकील बड़ायूनी का। हम नाजुक नाजुक दिल वाले बस ऐसे ही तो होते हैं, कभी हंसते हैं, कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, कभी दिल में ख्वाब भी रोते हैं। गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, ये न जाने हाय हाय ये जालिम जमाना।

खूबसूरत अंदाज में पेश थी ये गज़ल महान गायक केएल सहगल की आवाज़ में। उनके जैसा तो कोई हमको दोबारा ना मिला, हम भंवर में ही रहे, हम भंवर में ही रहे, हमको किनारा ना मिला। डर गए जब भी वहशते हालात से हम, मनाना चाहा था मगर कोई सहारा ना मिला। चांदनी रात में तारों की आसमान पे हमें उनकी आँखों की तरह कोई सितारा ना मिला। रात भर क्यों उनकी हंसी उनकी हाइयाँ याद आई, जिनकी बाहों में जैयद कोई सहारा ना मिला।

मखमूल नगमा पेश था तलत महमूद की मखमली आवाज में। मौसिकार शिवंग की मौसिकी थी, नगमकार था शायर नक्शब। अब लीजिए पेश है लकी अली और सुनिधि चौहान की गाए हुए ये दो गाना।

खूबसूरत अंदाज में पेश था ये डुएट। मौसिकार M.M. क्रीम की मौसिकी थी, कलाम था शायर निदा फासली का। अगला दो गाना सुनवाएंगे मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

माँ का दो गाना पेश था, संगीत से सवार थे शंकर जयकिशन बोल था, शायर शैलेंद्र का। उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं, उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम से लुत्फ उठा रहे हैं। कौन कहता है वक्त बहुत तेज गुजरता है, तुम कभी किसी का इंतजार करके तो देखो, ऐसे में कोई किसी का दीवाना ना बने।

छू लेने वाली नगमा पेश था से रामचंद्र की मौसिकी थी। दर्श को लिखने वाले थे पीएल संतोषी। अब लीजिए पेश है महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में ये दो गाना।

सभी सुनने वालों को निशा की तरफ से आदाब अर्श और नमस्कार। पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में हमने फिल्म मुगले आजम के बारे में बयान किया था। मैंने बतलाई थी कि सलीम जंग के मैदान से जब वापस आते हैं तो खुशी के मौके पर दावत दिया जाता है। दावत के माहौल में सलीम एक मूर्ति को बेनकाब करता है, लेकिन वो मूर्ति नहीं, एक जीती जागती लड़की थी जिसे संग तराशी मूरत बनाकर दरबार में पेश किया था। मैंने पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में शहंशाह अकबर की आवाज़ में डायलॉग सुनाई थी। आपने सुना था कि अकबर को जब एहसास हुआ कि मूर्ति नहीं एक जीती जागती लड़की थी तो उन्होंने संग तराशी को दाद दिया, और जब उन्होंने लड़की से सवाल किया कि वो कौन है तो लड़की ने अदब से अकबर को जवाब देती है कि वो सिर्फ एक कनीज स्लाफेन है। अकबर कनीज की खूबसूरती को तारीफ करता है और उसे अनारकली के खिताब देता है। सलीम को अनारकली से मोहब्बत हो जाता है और दोनों एक दूसरे से छुप कर मिलते हैं। सलीम और अनारकली की रोमानी भरी बेपनाह मोहब्बत और ना मिलने की तड़प कई फिल्मों में बार बार दोहराई गई है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको इसी फिल्म मुगले आजम से एक खूबसूरत गीत सुनाते हैं जिसका रिकॉर्डिंग हुआ था लेकिन फिल्म में पर्दे पर नहीं सुनाई गई, यानी इस गीत को नहीं फिल्माया गया है। तो बहुत ही खूबसूरत गीत जो लता मंगेशकर ने गाई थी, आइए सुनें।

इश्क सब दुनिया वाले। फिल्म मोहले आजम का गीत आपने अभी लता मंगेशकर से सुना, दिल लुभाने वाले गीत है। इसी फिल्म में से हम आपको एक और गीत सुनाते हैं, एक खास भजन है जिसके साथ एक कहानी जुड़ी है। कहानी हम आपको अभी सुनाएंगे ये भजन सुनने के बाद।

मोहे पनघत पे नंदलाला। इस भजन को 5 दिन लगी थी फिल्माने में। इन 5 दिनों में एक अजनबी सारा दिन मोहन स्टूडियो में बिताते थे। बाद में आसिफ को एहसास हुआ था कि वो अजनबी कोई और नहीं, पाकिस्तान के वजीर आलम जुल्फिकार अली भुट्टू थे। अली भुट्टू ने बॉम्बे में उन दिनों के वर्ली होटल में ठहरे हुए थे। तो स्टूडियो में शूटिंग के दौरान पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर आलम 5 दिन लगातार बिताए। किसी को एहसास नहीं था कि ये जुल्फिकार अली भुट्टू थे, लेकिन बाद में पता चला कि भुट्टू ने खास तौर पर मधुबाला के को देखने के लिए आते थे। मधुबाला की खूबसूरती के बारे में उन दिनों में बहुत चर्चा थी। शक थी कि भुट्टू मधुबाला के वास्ते 5 दिन तक मोहन स्टूडियो में दिन बिताते थे। इसी तरह मधुबाला की खूबसूरती पर उन दिनों के बहुत नौजवान दीवाने थे। इसमें से दिलीप कुमार भी एक थे। इस बारे में हम आगे चलकर और बातें करेंगे। इस फिल्म का एक और खास गीत हम आपको सुनाना चाहते हैं। फिल्म मुगले आजम के कुछ हिस्से रंगीन में थे, खास तौर पर ये मंजर जिस पर ये गीत फिल्माया गया है। इस गीत के बारे में कहा गया कि जिस अंदाज से मधुबाला अपनी अदायगी पेश किया था, आंखों में वो जुनून, बेखौफ अपने प्यार के खातिर मरने की तैयार, दूसरे अदाकारों में नहीं देखे हैं।

छुप के आहे भरना था, जब प्यार क्या तो डरना क्या। ये प्यार मोहब्बत का बयां है जो मधुबाला और दिलीप कुमार से जुड़ी हुई थी। मधुबाला और दिलीप कुमार की बात ही अलग थी। दोनों में प्यार था, दोनों में 7 साल गहरी ताल्लुक थे। फिल्म मुगले आजम राजस्थान की रेगिस्तान में फिल्माया गया था। शहंशाह अकबर वारिस के लिए मिन्नत किया था। अकबर को सलीम चिश्ती की दरगाह अजमेर में बेटा के लिए इबादत करना था। पृथ्वीराज कपूर जिन्होंने अकबर के किरदार कर रहा था, आसिफ से कहा कि उन्होंने कड़ी धूप में नंगे पांव रेगिस्तान में चलकर सलीम चिश्ती के दरगाह जाएंगे मिन्नत करने के लिए। आसिफ ने पृथ्वीराज कपूर से कहा कि शहंशाह अकबर को हाथी पर शान से सवारी करना है, लेकिन पृथ्वीराज कपूर आसिफ को यकीन दिलाया कि रेगिस्तान के कड़ी धूप में नंगे पांव पैदल चलने से दर्शक को निहायत मुतासर होगा। पृथ्वीराज कपूर का बेटा शमी कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब फिल्म मुगले आजम बन रहा था तो उन्होंने कभी कभी अपने वालिद के साथ स्टूडियो जाते थे। शमी कपूर अपने वालिद के बारे में कहा था कि जब उन्होंने तैयार हो जाते थे अपने किरदार अदा करने को तो वालिद से शहंशाह अकबर में बदल जाते थे और अपने बेटे को भी नज़रअंदाज करते थे, इतना उन्होंने अपने किरदार में समा जाते थे। शमी कपूर ने पृथ्वीराज कपूर के बारे में ये भी कहा कि रेगिस्तान में नंगे पांव चलने के सबब से उनके पांव में छाले पड़ गया था, पर उन्होंने उफ तक नहीं किया था। पृथ्वीराज कपूर की फिल्मी सफर में मई महीने की कड़ी धूप बिना जूते के पैदल चलना फिल्माया गया मंजर हकीकत था। उसे अपने जौहर दिखाने की तहरीक था, चुनौती थी।

0: जिस तरह पृथ्वीराज कपूर के किरदार रेगिस्तान में नंगे पांव चलना असली था, उसी तरह मधुबाला अनारकली के किरदार के कुछ हिस्से हकीकत थी। मधुबाला को जंजीर में जकड़ना, शाही महल की कैद खाने में डालना, वो जंजीरें नकली नहीं, असली थी। जंजीरों में लिपटी हुई गीत फिल्माना, मधुबाला की चेहरे से डर झलक रही थी। आसिफ मधुबाला की चेहरे से ये डर महसूस करना चाहता था। आसिफ को एहसास था कि मधुबाला को इस मंजर को लोहे की जंजीर में लिपटी बहुत तकलीफ होगी, पर उसे सिर्फ अपने फिल्म से वास्ता था। मधुबाला को दिल की बीमारी थी, दिलीप कुमार से दिलो जान से मोहब्बत करती थी। मौसिकार नौशाद ने कहा, मुझे ऐसा अंदाजा था कि दिलीप और मधुबाला की मोहब्बत है और लड़की की बहुत ख्वाहिश है दिलीप कुमार के साथ शादी की, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मोहब्बत कामयाब हो। मधुबाला कहती थी कि मोहब्बत में नाकाम होना भी मोहब्बत की कामयाबी है। अगर आपको मंजिल मिल गई तो मंजिल की तमन्ना तलाश खत्म हो जाएगी। 7 साल दोनों में गहरी ताल्लुक थी और मुगले आजम के दौरान दिलीप ने मधुबाला से रिश्ता तोड़ दिया था। इस फिल्म के इस मंजर में ये क्या दर्द थी, अनारकली के किरदार में समा जाना? सवाल यही था कि दिल का दर्द या दिलीप से बिछड़ने का दर्द। फिल्म मुगले आजम 5 अगस्त 1966 में पर्दे पर दिखाई गई। फिल्मी दुनिया के तारीख में मुगले आजम सबसे बेहतरीन फिल्म थी। उससे पहले थी फिल्म मॉडर्न इंडिया। फिल्म मॉडर्न इंडिया 1975 तक और 1966 तक लगातार सिनेमा घरों में दिखाई गई थी। मॉडर्न इंडिया के रिकॉर्ड मुगले आजम 1966 में तोड़ा। 15 साल मुगले आजम तहलका मचाया था। फिल्म मुगले आजम के बाद था शोले, जिसके रिकॉर्ड आज भी फिल्मी दुनिया की तारीख में कायम है। मुगले आजम के कुछ हिस्से रंगीन थी, पर 2004 में पूरी फिल्म रंगीन में बनी है और 2006 में पहली बार पाकिस्तान में पेश किया गया। इस फिल्म को पाकिस्तान में देखने के लिए कितने पाकिस्तानी बेताब थे। बहुत सुने थे फिल्म मुगले आजम के बारे में और 40 साल बाद मौका मिला था मुगले आजम देखने को।
1: ये दिलचस्प अंदाज़े बयान यकीनन हमारे इनाम के मुस्तहिक है।
2: सही नसीब, जिल्ले इलाही की फराख दिली से कनीस को यही उम्मीद थी।
1: दारोगा जिंदान, इस बेबाक लौंडी को ले जाओ और कैदखाने के अंधेरों में गर्क कर दो।
3: तख लिया

0: तुम्हारी मौजूदगी नाफरमानी की दलील है।
1: अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा।
0: और तुम कर भी क्या सकते थे?
1: एक अजीम शान शहंशाह के सामने कोई कर भी क्या सकता है, मगर आज जिल्लेलाही को अपने जुल्म और मेरे जब्त की एक हद मुकर्रर करनी होगी।
0: अगर तुम्हारी आरजू एक कमीज है, एक बांदी है, तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
1: क्या परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप हों, सांसें मेरी हों और दिल की धड़कनों पर आपका कब्जा रहे? जिल्ले इलाही, क्या मेरी जिंदगी आपकी दुआओं का कर्जा है जो मुझे अपने आंसुओं से अदा करना पड़ेगा?
0: कलीम, अनारकली तुम्हारे काबिल नहीं।
1: यूं नहीं, एक लाडले बेटे के बाप बनकर मुझे अपने कलेजे से लगा लीजिए और उन्हीं प्यार भरी नजरों से देखिए जिनसे पहली बार आपने मुझे देखा था। मुझे हिंदुस्तान का शहजादा नहीं, अपना बेटा समझिए और फिर कहिए कि अनारकली मेरे काबिल नहीं।
0: हम एक लाडले बेटे के शफीक बाप जरूर हैं, मगर हम शहंशाह के फर्ज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम अपने बेटे के धड़कते हुए दिल के लिए हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकते।
1: तकदीरें बदल जाती हैं, जमाना बदल जाता है।
2: हिदायतकार आसिफ के मुखले आजम फिल्मी दुनिया के तारीख में बेहतरीन फिल्मों में गिनती है। इन फिल्म में 20 गाने रिकॉर्ड हुआ था। इन 20 गानों में से 10 गाने फिल्माया गया है। आसिफ का मकसद पूरा हुआ, अपना वादा जो आसिफ अवाम से किया उसे पूरा किया। मराठा मंदिर जिस थिएटर में मुगले आजम पहली बार पर्दे पर दिखाते, बाहर से सजाया गया था। टिकट हासिल करने के लिए अवाम कतार में कई रात गुजार रहे थे। पर्दे पर दिखाने से पहले मुगले आजम तहलका मचा दिया था। पेशकश हिदायतकार आसिफ का सपना पूरा हुआ। यहाँ तक हमने बॉम्बे का फिल्मी दुनिया के 30 बेहतरीन फिल्मों में से मुगले आजम के बारे में बयां की,
0: जो तुम्हारे फन को पेश करने का खूबसूरत सहारा बनी थी।
3: यानी
0: कल अनारकली से तुम्हारी शादी कर दी जाएगी।
3: लेकिन जिल्ले इलाही,
0: क्या ये इनामात कम है?
3: बहुत है, उम्मीद से कहीं ज्यादा। आज

अभी आपने फिल्मी दुनिया सुना, जिसमें हमने छोटे रूप में फिल्म मुगले आजम के बारे में बयान किया। आपने सुना कि उस दौर में, मतलब सुनहरी दौर के पेशकश हिदायतकार कितने जज्बे के साथ फिल्म को कामयाब बनाने के लिए मेहनत करते थे। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं लता मंगेशकर से अगला गीत। पहले एक शेर अर्ज है, तुम मेरे कोई इल्जाम ना ढूंढो, चाहा था तुम्हें यही इल्जाम बहुत है।

ग्रीन सॉन्ग पेश था स्वर की मालिका लता मंगेशकर की आवाज़ में, हेमंत कुमार की मौसिकी थी, कलाम शायर गुलजार का था। जिंदगी, जिंदगी के उलझनों से फरार चाहिए मुझे, बचपन का एक दिन उधार चाहिए।

महेंद्र कपूर और हेमंत कुमार की मौसिकी थी ओपी नैयर की। ये जुल्फों की बिखरी गदा क्या कहती है, सुनाने को जा रही है शोखी आवाज में आशा भोसले।

खूबसूरत अंदाज में पेश था यह गीत। संगीत से सवारे थे संगीतकार राजेश रोशन। अगला गीत पेश है मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। वो क्या सुनाने को जा रहा है, लीजिए पेश है।

सदाबहार सॉन्ग पेश था ओपी नैयर का, संगीत रचना बोल था शायर लुधियानवी का। मुझे तुमसे बात करना पसंद है, पर मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होता। जो तुमको पसंद हो वही बात कहेंगे।

और रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने।

Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं, जो आम्स्टरडम स्टूडियो से नशर किया जाता है। अब आइए सुने आशा भोसले से अगला गीत।

कमाल का नगमा पेश था राम लक्ष्मण की मौसिकी, नगमकार था नक्श लियालपुरी और रविंद्र रवेल। न जाने क्या कशिश है उसकी मधोश आंखों में, नजर अंदाज जितना भी करूं, नजर अंदाज जितना भी करूं, नजर उस पे ही पड़ती है। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की,

रोमानियत अंदाज में पेश था ये नगमा मोहम्मद रफ़ी साहब की शहद भरी आवाज में। एक बार फिर इसी अंदाज में लीजिए पेश है ये नगमा।

फिल्म बहारे फिर भी आएंगी में से पेश था ये नगमा। मौसिकार ओपी नैयर की मौसिकी थी, नगमकार था शायर अनजान। एक लम्हे में एक मंजर गुजर जाता है, जब कोई अपना बेगाना नजर आता है। यूं तो आवाज आती है हर शीशे के टूटने की, पर कभी कभी बिना आवाज की भी सब कुछ टूट जाता है।

प्यार तो सपना है। निधा फाजली का कलाम और उषा खन्ना की मौसिकी में पेश था ये नगमा। अब आइए सुने उदित नारायण से अगला गीत।

अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, उदित नारायण की आवाज़ में पेश था ये गीत। अब आइए सुने अगला गीत।

फिल्म आविष्कार में से ये गीत पेश था। गाने वाले थे मन्ना डे, संगीत से संवारे थे कानू रॉय और तर्ज को लिखने वाले थे कपिल कुमार। आइए सुने अगला गीत।

वो दूसरा कोई नहीं, आवाज थी सुरेश वारकर की। अमीर कसल बश का लिखा तर था और ये गीत फिल्म राम तेरी गंगा मैली में से लिया है जो नेहती फैफन तख्तख में रिलीज हुआ था। आया था एक शख्स मेरे दर्द को बांटने, रुखसत हुआ तो अपने भी गम दे गया मुझे, रूठे हो तो तुमको कैसे मनाऊं पिया बोलो ना।

रोमानियत अंदाज में पेश था ये नगमा। रवि की मौसिकी थी, दर्श को लिखने वाले थे साहिर लुधियानवी। अब आइए सुने लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में ये दो गाना।

खूबसूरत अंदाज में पेश था ये दो गाना। लोग तुमसे चाहे जो भी छीन ले, पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते, तेरा कर्म ही तेरी विजय है।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टर्डम और अल्मेरा से लड़कन गयाधर और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते शुक्रवार के सुबह 80 साल के आयु में तख्तियार औत लड़कन रवीन और विजय गयाधर की माँ रोसिता गयाधर पंचू की सास प्रीति और रैना गयाधर के आजी रीनिया हरद्वार और राजेश बोंदालापीडिया के बहन अम्स्टर्डम उस दौर की रहने वाली श्रीमती मारी उर्सिला जवाहिर की मृत्यु अम्स्टर्डम के उंज लीफ्रावा खास्टहाउस ओस्ट में हो गई है और स्वर्गीय श्री हरी जवाहिर और स्वर्गीय नेल बोंदालापीडिया के बेटी थी और सूरीनाम और नीदरलैंड में ऑंडरवेजरेस थी। अम्स्टर्डम और अल्मेरा से लड़कन गयाधर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते शुक्रवार के सुबह 80 साल के आयु में तख्तियार औत लड़कन रवीन और विजय गयाधर की माँ रोसिता गयाधर पंचू की सास प्रीति और रैना गयाधर के आजी रीनिया हरद्वार और राजेश बोंदालापीडिया के बहन अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प की रहने वाली श्रीमती मारी उर्सिला जवाहिर की मृत्यु हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया कल बुध के दिन में 2 बजे मोरखन में दाह ओम ट्वी उर किए जाएंगे। वेस्टगार्ड क्रीमाटोरियम ओक मेरवैग 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतवार्थ फुरजोरखिंग परिवार गयाधर और परिवार जवाहिर के दुख में शामिल है।

इफ्तिदाए इश्क भी हम सारी रात जागे, अब तो अल्लाह जाने कि क्या होगा आगे। लता जी मुकेश जी के साथ और फिल्म का नाम हरियाली और रास्ता। मोई लगे तो

0: हमको तो डर है कि तेरी बाहों में हम खुशी से ना आज मर जाए। लता जी और महेंद्र कपूर इन दोनों से गीत को आप सुने उजाला रेडियो पर।
1: यस, यू सेड गुड, दिस इज उजाला रेडियो, द बीट फॉर न्यू।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे। और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

नम्र संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलांग तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए। Je business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, shop. Remix. 10,000 party beats. 2 days and two areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza and lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brasa Fest.

सुन तू कान खोल के सुन तू मोह से सुन हाँ सुनना चली ब्रास अफेस फाज़ एन इज वॉलेडिग आउटवर्कोक सोल्ड आउट हैव यू नोग गेन टिकट्स दन इज दिस दी कांस ऑन द एर्ली बर्ड टिकट्स इन फाज़ 2 टू स्कोरन Wacht niet te lang, want in de volgende fase gaan de ticketprijzen omhoog. Or manga hojaga. Dus toen na wacht ik er. Esuga, toen na wacht ik er. Toen jellike, jelly gume, jelly brasafest. Brasafest. Bestel nu via www.brasafest.nl.

यू आर उजाला रेडियो का पैगाम आप सुन रहे हैं। आपकी खिदमत में शहीद गुलजार हाजिर है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। हर एक को एक शुभ दिन मुबारक दिन अर्ज है स्टूडियो से। प्रोग्राम को आप सुनते रहना और सुनते ही जाना। आइए मिलकर सुनते हैं श्रेया घोषाल और हिमेश रेशमिया की आवाज में, खुद हिमेश के साज पर, चलाओ ना नैनों से बांध रहे। फिल्म का नाम बोल बचन। चलाओ

हम आपको प्रोग्राम में एक सेलेक्शन अब सुनाने वाले हैं और इस बार है द हार्ट ऑफ मिलियंस दमायती मुकेश जी की आवाज में। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देते। लीजिए पेश खिदमत है मुकेश जी की आवाज़।

वाह क्या बात है, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देते, बस तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देते। द हार्ट ऑफ मिलियंस, दमायती मुकेश जी की आवाज में आप अभी सुने हैं। यू आर उजाला रेडियो के जरिए और लाइव कार्यक्रम आपकी खिदमत में नशर है। आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं, आप सभी खुश रहे और सलामत रहे। उजाला का पैगाम आप सुनते रहना और सुनते ही जाना।

0: हम आपको क्या बताएं कि तुम्हारा इंतजार में हम तो हमेशा नाचते हैं। यू आर उजाला रेडियो का पैगाम में हम आपको मिक्स मार्क्स सॉन्ग्स में एक और सिलेक्शन अब सुनाने वाले हैं। फिल्म का नाम लगा चुनरी में दाग। इस बार है द गोल्डन वॉइस सोनू निगम, के सुनिधि चौहान और श्रेया घोषाल।
1: That's right.
0: कच्ची कलिया है।

0: चांद गर चमकता है तो सूरज के सहारे से, मेरा प्यार अगर पाक है तो तेरे दामन के सहारे से।
1: हम आपको प्रोग्राम में एक वेरी रोमांटिक सॉन्ग, एक रोमानी नगमा अब सुनाने वाले हैं। मैं प्रेम की दीवानी हूं नामक फिल्म से, कसम की कसम, कसम की कसम है कसम से, जाने मन हमको प्यार सिर्फ है तुमसे। सभी लॉफर्स के वास्ते कसम की कसम।

0: रेडियो के क्षेत्र पर हर एक कामकाज के वास्ते आप डायल करें एम्स्टरडेम में 0204090807 पर 020-409-0807 पर, या आप लिख सकते हैं info@ujala.nl. Just enjoy the vibrations of UR Ujala Radio. Radio. Tu jaane hai, toh? Toh?
1: The most sensational and
2: the best. The best.
0: नहमों की ये भंडार में से एक गोल्डन ओल्डी सिलेक्शन सवेरे वाली गाड़ी नामक फिल्म से द नाइटिंगेल लता मंगेशकर की आवाज दिन प्यार के आएंगे सजनिया तेरी बहार लाएंगे सजनिया आया है संदेशा ये सवेरे वाली गाड़ी से मेरे दिलदार का आइए मिलकर सुनते हैं द नाइटिंगेल लता मंगेशकर

दिन प्यार के आएंगे सजनिया, तेरी बहार लाएंगे सजनिया। आया है संदेशा ये सवेरे वाली गाड़ी से मेरे दिलदार का। आइए उजाला रेडियो यूआर के जरिए एक और सिलेक्शन हम आपको सुनाने वाले हैं, और इस बार है मोहम्मद अजीज की आवाज़ में राजेश रोशन के साज पर, एक अंधेरा लाख सितारे। आइए मिलकर सुनते हैं मोहम्मद अजीज को।

0: very sad song. एक अंधेरा लाख सितारे मोहम्मद अजीज की आवाज अब अभी प्रोग्राम में सुने हैं यू आर उजाला रेडियो के जरिए. अब हम आपको एक मजेदार सिलेक्शन वेरी फनी सॉन्ग
1: बजाइए,
0: एक मजेदार नगमा आपको सुनाने वाले हैं. आइए मिलकर सुनते हैं विधाता नामक फिल्म से. सभी श्रोताओं को एक शुभ दिन मुबारक दिन अर्ज है. आप हमें यहाँ से भी सुन रहे हैं. आप सभी खुश रहे और सलामत रहे और लुत्फ उठाते रहना यू आर से.
1: सुनो सहेलियों की
0: सात सहेलिया की कहानी आइए मिलकर.

बस एक सहेली का मिया था रेडियो अनाउंसर, अरे गाना सुनाए घड़ी घड़ी, सात सहेलियां खड़ी खड़ी, फरियाद सुनाए घड़ी घड़ी। मजेदार नगमा हम आपके खिदमत में पेश की है। यू आर उजाला रेडियो का पैगाम है, आपकी खिदमत में स्टूडियो में हाजिर है आपका खादिम शहीद गुलजार, और ऐसे में हो जाए मोमिना और राहत जी की आवाज़ में आफरी आफरी।

बने रहिए उजाला रेडियो पर, म्यूजिक बोलता रहेगा आपके घरों में, आपके मोटर कार में या जहां पर भी आप हैं।

अभी आपने सुने हैं उजाला रेडियो पर ये शानदार सिनेमा जो कि पेश किया गया है. चेक फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन उजाला.nl उजाला रेडियो डीएबी प्लस पर हॉलैंड भर में.

अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

फ्रीडम आ फ्रीडम, इश्क पहली सांस भी और इश्क ही है आखिरी दम. Yeah, the symphon just means sendless and such in jigger on the vocals.

सुन वालों, ये उजाला रेडियो है और उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम नाम सुनाने को जा रहे हैं आंस्टांड ज़्यादा को जबरदस्त हंगामेदार फेस्टिवल होने वाला है ब्राज़ा फेस्ट इंडोर समर एडिशन इंदौर। हाँ तो मोइस सुन रहे भीतर जिया इवेंट सेंटर दनाख में आप सुनने को जा रहे हैं नाम। इस बार प्रोग्राम में हम ला रहे हैं अफीशा की आवाज़ में ओ कमेज़ और ब्राज़ा फेस्ट।

अमृत संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होनेटरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया आशा भोसले की आवाज के कितने भी तो कर ले सितम हंस हंस के सहेंगे हम ये प्यार ना होगा कम सनम तेरी कसम No matter how much injustice you do with me, I bear it with a smile. उजाला रेडियो का पैगाम है मिक्स मार्क सॉन्ग्स आपके खिदमत में नशर है और इस बार आप सुनिए सुरों का बादशाह संगीत का फरिश्ता पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब की आवाज़

1971 ka film An Milo Sajanase. Mukul Dutt ka film An Milo Sajanase aapne bhi sune hai. Suro ka Badshah Mohammad Rafi sahib ki awaaz, Anand Bakshi ka kalam aur sangeetkar Lakshmikant Pyarelal. सितारों का सितारा उजाला रेडियो का पैगाम है और रेडियो के क्षेत्र पर हर एक कामुल काश के वास्ते आप सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 10 और 3 के दरमियान फोन कर सकते हैं 020-409-0807 या तो ईमेल द्वारा आप भी हमें खबर भेज सकते हैं और पता है info@ujala.nl. Mix Max Songs में फिल्म का नाम सागर, यूं ही गाते रहो.

बहुत ही खूबसूरत रोमानी सेलेक्शन आपने भी सुने हैं कि तू है मेरा सनम उजाला रेडियो का पैगाम है और मिले जुले संगीत आपकी खिदमत में नशर है। और इस बार आप सुनिए हत्या नामक फिल्म से कि आपको अगर जरूरत है, आपको अगर जरूरत है तो हाजिर दिल मेरा आकर मुफ्त में दिल मेरा ले लो। द मेलोडिक क्वीन ऑफ इंडिया आशा भोसले और हसीनों के पुजारी किशोर दा के आवाजों में आपको अगर जरूरत है बाय द रॉकिंग द मोस्ट सेंसेशनल एंड द बेस्ट उजाला रेडियो।

जिसका नाम मोहब्बत है, सबसे बड़ी वो ताकत है, आपको अगर जरूरत है दिल मेरा हाजिर खिदमत है। डिस्को किंग बप्पी लहरी के साज पर फिल्म हत्या से, 1988 का फिल्म, 1988 का फिल्म हत्या से।

गुरुवार का पैगाम है और मिले जुले संगीत जो हम आपको सुना रहे, और इस बार आप सुनिए फिल्म शागिर्द का सिलेक्शन के दुनिया पागल है, दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टर्डम और अल्मेरा से लड़कन गयाधर और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते शुक्रवार के सुबह 80 साल के आयु में तख्तियार और लड़कन रविन और विजय गयाधर की माँ रोसिता गयाधर पंचू की सास प्रीति और रैना गयाधर के आजी रिनिया हरिद्वार और राजेश बोंदालापीडिया के बहन अम्स्टर्डम उस दौरे की रहने वाली श्रीमती मारी उर्सिला जवाहिर की मृत्यु अम्स्टर्डम के ओंजे लीफ्रावो गास्टहाउस ओस्ट में हो गई है और स्वर्गीय श्री हरी जवाहिर और स्वर्गीय नेल बोंदालापीडिया के बेटी थी और सूरीनाम और नीदरलैंड में ऑंडरवेजरेस थी। अम्स्टर्डम और अल्मेरा से लड़कन गयाधर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते शुक्रवार की सुबह 80 साल के आयु में तख्तियार और लड़कन रवीन और विजय गयाधर की माँ रोसिता गयाधर पंचू की सास प्रीति और रैना गयाधर के आजी रिनिया हरिद्वार और राजेश बोंदालापीडिया के बहन अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प की रहने वाली श्रीमती मारी उर्सिला जवाहिर की मृत्यु हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया कल बुध के दिन में 2 बजे मोरखन में दाह ओम ट्वी उर किए जाएंगे। वेस्टगार्ड क्रीमाटोरियम ओक मेरवैख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतवार फुरजोरखिंग परिवार गयाधर और परिवार जवाहिर के दुख में शामिल है।

हम आ गए हैं तो फिल्म आरज़ू का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में आप सुने और ये उजाला रेडियो है सुनने वालों। अगला गीत सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल से आप सुनिए।

उज्जला रेडियो देश भर में तू जाने तो उज्जला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उज्जला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलम तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए

याद है तो बाप हूँ तेरा मगर तुझको खिला सकता नहीं, दोनों हाथों से कभी

कितनी बेचैन होके हम तुम से मिले। फिल्म कसूर अलका याग्निक एंड उदित नारायण, इन दोनों से आप सुने और ये उजाला रेडियो है।

और रब्बा आई ना जुदाई, फिल्म जुदाई का टाइटल सॉन्ग आप सुने अलका अलका याग्निक, हरी हरन और जसपिंदर ने।

मुझसे मिलना फूलों की तरह, मुझसे मिलना फूलों की तरह और बिछड़ना खुशबू की तरह। ये उजाला रेडियो है और इसी के साथ आरंभ किया जा रहा है प्रोग्राम दर्द दिल, दर्द भरी गीतों के साथ। इस प्रोग्राम में हम वो गीतों आपको सुनाते हैं जो कि सुन करके कभी दिल को आराम मिलता है और कभी दिल का दर्द और बढ़ जाता है। कुछ भी हो, कैसा भी हो, हम प्रोग्राम आप ही के लिए बना रहे हैं। उम्मीद करते हुए कि आप सुन करके और पसंद करोगे। तो चलिए आज का प्रोग्राम में पहला गीत पेश है।

जो प्यार है किसी और का, तुम्हें चाहता कोई और है। अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू, इन दोनों की आवाजों में आप सुने 1991 निखंतिन इनन निखंत के फिल्म, और फिल्म का नाम दिल है कि मानता नहीं। इसमें संगीत से सजाइए इस गीत को नदीम श्रवण, और इस फिल्म में काम किए पूजा भट्ट के साथ आमिर खान।

0: से
1: तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, या खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ। मुकेश जी की आवाज, फिल्म हरियाली और रास्ता 1962 नेहुंतिन त्वेयन जस्तक के फिल्म में म्यूजिक कंपोजर शंकर जयकिशन और इस फिल्म में उन दिनों काम किए मनोज कुमार के साथ माला सिन्हा जी। उजाला रेडियो है ये और प्रोग्राम का नाम है दर्द-ए-दिल।

मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गीत आप सुने। फिल्म का नाम दो बदन 1966 निखंतिन जैसन जस्तक की फिल्म और संगीतकार थे रवि और इस फिल्म में काम किए मनोज कुमार के साथ आशा पारेख।

सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। द मैन विद द गोल्डन वॉइस, तलत महमूद की आवाज में आप सुने 1957 1955 तक की फिल्म एक साल में पेश आई गीत और रवि संगीत से सजाए। और इस फिल्म में काम किए अशोक कुमार के साथ मधुबाला। उजाला रेडियो है ये प्रोग्राम दर्दे दिलो।

लता जी की आवाज। 1971 नेफंतिन एनन जेफंतक के फिल्म उपहार से निकाला हुआ और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और इस फिल्म में काम किए उन दिनों जया भादुरी के साथ कामिनी।

कितना दान वो है जो जीवन से हारे, एक अंधेरा लाख सितारे। मोहम्मद अजीज़, हाँ मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में आप सुने 1985 नेहंतिन फैफन तख्त के फिल्म आखिर क्यों से निकाला हुआ। राजेश रोशन संगीतकार थे और फिल्म में काम किए राजेश खन्ना के साथ स्मिता पटेल। उजाला रेडियो है ये, प्रोग्राम का नाम दर्द दिल, दर्द भरे गीतों के साथ।

इने वाले सुन गम की दुनिया से दिल भर गया। द मैन विद गोल्डन वॉइस तलत महमूद की आवाज में आप सुने 1953 इखंतिन्द्रियन फाइफ तक की फिल्म दिले नादान से, और गुलाम मोहम्मद संगीत से सजाए, और इस फिल्म में खुद तलत महमूद काम किए है श्यामा के साथ उन दिनों।

लता जी की आवाज में गीत आप सुने 1967 नई खंतिन जी फनन जस्त के फिल्म मिलन से निकाला हुआ और इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर्स लक्ष्मीकांत प्यारे लाल और फिल्म में काम किए सुनील दत्त के साथ नूतन जी। उजाला रेडियो है ये प्रोग्राम दर्द दे दिल।

जो प्यार तूने मुझको दिया था वो प्यार मैं तुझे लौटा रहा हूँ। और हाँ, मुकेश जी की आवाज़ में इस गीत को आप सुने 1964 नीखंतिन फिरन जस्त की फिल्म दुल्हा दुल्हन से। और देखा जाए तो हाँ, काम किए इस फिल्म में राज कपूर के साथ साधना।

कर देख लिया अब आग में जलकर भी देखेंगे। आवाज लता मंगेशकर की, हेमंत कुमार म्यूजिक कंपोजर। फिल्म 1954 निकंतिन फिरन फैफ्तक के फिल्म नागन से निकाला हुआ और काम किए प्रदीप कुमार के साथ विजयंती माला।

0: रुक छोरी रुक,
1: सर पे न झुक, अच्छी नहीं ये बहाने।
0: रुक छोरी रुक,
1: सर पे न झुक, अच्छी नहीं ये बहाने।
0: अरे तक जरा तक,
1: जल्दी से बक, कहता है क्या वो दीवाने।
0: छोरी छोरी छोरिया,
1: जा जा जा छोड़ जा जा जा छोड़ जा जा जा छोड़ जा।

0: होश हुए गुम, देखा जो मुखड़ा तुम्हारा।
1: होश करो तुम,
0: होश हुए गुम, देखा जो मुखड़ा तुम्हारा। आशिकों की सुन,
1: छोड़ मेरी गुन, ऐसे ही कर ले
0: गुजारा। चोरी आ आ चोरी आ,
1: जा जा जा छोरा, जा जा जा छोरा, जा जा जा छोरा, जा।